ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

गुरुआं पीरां फकीरां योध्यां बहादुरां दी धरती पंजाब। पंजाबी मां दे होनहार रखवाले पुत्तर जो अपने आप नूं नशियां विच बर्बाद कर रहे ने, उन्हां नूं झलमण सिंह टंडे दी कलम मिस पूजा दी जवानी कुछ इउं कह रही है।

0: अपने ग्रह विखे प्रभात फेरी सदन वास्ते नाम दर्ज कराओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सत श्री अकाल जी।
2: बाबा जी, साडा भी नाल।
0: हाँ पुत, तेरे घर से जरूर आवांगे।

उसका पैर पकड़ लिया और नदी की ओर खींचने लगा। जब गज के नाक कान पानी में डूबने लगे तो उसने प्रभु को स्मरण किया, प्रभु को याद किया और प्रभु ने आके उसकी रक्षा की। लेकिन यदि हम गहराई में जाएं तो इस भजन में केवल गजग्रह की कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है। हम सब इस संसार रूपी सिंधु में आते हैं और यहाँ माया मोह रूपी ग्रह हमें

0: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30, दस ब्रैडफोर्ड 7230 30।
4: 24 hours a day.
5: Looking ahead over the coming days, here's what's happening. First, in Bradford, Beyond the Barricade is at St George's Hall on June 19th. Also in Bradford, Sing Along of the Greatest Showman comes to St George's Hall on the 20th of June. Over in Calderdale, The Kooks are live at the Peace Hall in Halifax on the 19th of June, and Belle and Sebastian perform there on the 21st of June. In Leeds, Lily Allen is at the First Direct Bank Arena on 21st of June. In Manchester, the B-52s and Devo bring their Cosmic De-Evolution Tour to the AO Arena on 21st of June. Over in East Lancashire, Luther Live is at Burnley Mechanics on the 19th of June. In Derby, Little Shop of Horrors continues at Derby Theatre until the 20th of June. In Milton Keynes, The Karate Kid the Musical is at Milton Keynes Theatre from the 16th to the 20th of June. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: one, two, or three-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield, and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 723030 दास ब्रैडफोर्ड 723030 Zero.
4: Sunrise and music.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As

0: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.
1: सबको मेरा सलाम, सबको मेरा सलाम। दोस्तों, ये है लाल परी, तो मैं भी हूँ गुलफाम।

अच्छा ये बात है, जब देखोगी ऐसे हमको पहचानोगी कैसे हमको। गुस्सा है ये मजबूरी का, सारा झगड़ा है दूरी का। प्यार की लज्जत तुम क्या जानो, एक दिन मेरा कहना मानो। दिल

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: पुराना सुना बेचना है।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Sunrise and music.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।
4: Looking ahead over the coming days, here's what's happening. First, in Bradford, Beyond the Barricade is at St George's Hall on June 19th. Also in Bradford, Sing Along of the Greatest Showman comes to St George's Hall on the 20th of June. Over in Calderdale, The Kooks are live at the Peace Hall in Halifax on the 19th of June, and Belle and Sebastian perform there on the 21st of June. In Leeds, Lily Allen is at the First Direct Bank Arena on 21st of June. In Manchester, the B-52s and Devo bring their Cosmic De-Evolution Tour to the AO Arena on 21st of June. Over in East Lancashire, Luther Live is at Burnley Mechanics on the 19th of June. In Derby, Little Shop of Horrors continues at Derby Theatre until the 20th of June. In Milton Keynes, The Karate Kid the Musical is at Milton Keynes Theatre from the 16th to the 20th of June. And that's your Sunrise Radio event diary.
5: 24 hours a day.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।
4: Sunrise and music. It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: need a one, two or three bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रैडफोर्ड 7230303 जीरो।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायका तुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुसले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: चढ़ गया वे कलम रोड।
1: तेन लख दे एक सुनावा
0: सुना।
1: तेन दफ्तर हुने पचावा
0: सच्ची
1: किसे बुढड़े ड्राइवर ताई किसे बुढड़े ड्राइवर ताई ना बाबा आ कु सुनाई
0: ओ वाह।
1: तेन लख दे

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: बिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
3: ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ।
2: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
3: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਟੈਲੀਫੋਨ 01274 4895 9 3 5।

0: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303, दास ब्रैडफोर्ड 7230303।

शहनाज मंसूर एक बार फिर आपसे खिदमत में हाजिर हूँ ढेरों दुआओं के साथ। दुआएं हमेशा जो आपको मिलती हैं वो बहुत ही कीमती असासा होती हैं और मेरे दिल में भी हमेशा आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों पर अपनी रहमत का नुजूल हमेशा कायम और दायम रखे और आप हमेशा खुशियाँ बांटते रहे और खुशियाँ समेटते रहे। आमीन।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
3: Official media partner, Sunrise Radio.

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

आपके मनपसंद गीत और आपकी मनपसंद आवाजों पे मबनी एक बार फिर से खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप आज भी मेरे प्रोग्राम को और इन गीतों को इसी तरह एंजॉय करते हैं जैसे कि हमेशा करते आए हैं और आपका प्यार और आपका साथ हमें आज भी जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक साथ निभाने का।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म का किचन

कभी हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने खूबसूरत गीतों के साथ आपके दिल के मौसम को खुशगवार बना सकूं और आपको खुश कर सकूं। और आप जिस मूड में भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे गीत सुनकर आपका मूड जरूर चेंज हो जाएगा और आप भी खो जाएंगे इस खूबसूरत गीत में और भूल जाएंगे अपने सब कुछ, जो कुछ भी आप कर रहे थे या जो कुछ भी आपके दिल में था, उसे भूल भाल कर आप हमारे गीतों में खो जाएं, ये मुझे यकीन है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में, और इसके अलावा आप हमें डीएबी पे सुनते हैं, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, लीड्स और ईस्ट लंकाशायर के इलाकों में, और उसके अलावा मिल्टन कीन्स में भी आप हमें सुन पाते हैं। 100.6 एफएम पे आप हमें सुन सकते हैं कालदरडेर के इलाके में और इर्द-गिर्द के इलाके में, और आपके जरिए जो आप डाउनलोड कर सकते हैं आप स्टोर से, उसके आप हमें 2400 घंटे जहां चाहें, जब चाहें, जिस वक्त आपका जी चाहे आप सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन सकते हैं।

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: तेरी गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

और शहनाज मंसूर के साथ तो ऐसा है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी गीत हों आपकी पसंद के मुताबिक हों, लेकिन बास दफे हो जाता है कि आपके फरमाइशी गीत हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, जिसके लिए हमेशा हमें इस बात का मलाल रहता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि गीत आपकी पसंद के मुताबिक हों और जो भी आवाज़ें आपको बहुत पसंद हैं उसी आवाज़ में आपको गीत सुनाए जाएं। हमारी बेहद कोशिश होती है कि गीत आपके मायार पे पूरे उतरें और आपका दिल भी खुश हो और हम भी प्रोग्राम को इंजॉय कर सकें आपके साथ साथ।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 723030 दास ब्रैडफोर्ड 723030
4: Sunrise and music. It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

खूबसूरत गीत और खूबसूरत है आपका साथ भी, और हमेशा सालों से आपके पास आते हैं हम, और आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हमेशा हमें मिलती हैं, और आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आपके पास आए हैं। एक बार फिर से मौका मिला है आपके साथ मिल बैठने का, आपके साथ गीत और खुशियां बांटने का, तो मुझे यकीन है कि आप आज भी अपने प्यार और अपनी दुआओं से हमें नवाजते रहेंगे और यूं ही हमारा साथ हमेशा निभाते रहेंगे जैसा कि शुरू से निभाते आए हैं। और इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि आज आए हैं तो आपका प्यार और आपकी दुआएं भी जरूर पाएंगे। शुक्रिया।

प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में हमने कदम रखा है। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है जी आयान खुशामदीद, वेलकम। अभी तक साथ निभाने का, हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। हमारा और आपका साथ बरसों से चला आ रहा है, आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हम पाते आ रहे हैं और अब तो इसकी आदत सी हो गई है। आपका आना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर खुदा ना खास्ता आप कभी ना आए किसी वजह से तो आपकी कमी बहुत महसूस होती है। तो खुदा रहा ऐसा मत कीजिए, जब भी आपको मौका मिले ज़रूर आइएगा और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और अपनी खैरियत से आगाह करते रहिएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपकी दुआएं और आपका साथ हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमेशा हमेशा आप ही के साथ मज़ा आता है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रैडफोर्ड 7230303 जीरो

अनहोनी को होनी बना नहीं सकते। जमाने में हस्पे आरजू हम किसी को चाह तो सकते हैं मगर पा नहीं सकते। जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, वो खुद किसी दिल में समा नहीं सकते। जितना भी इसको तराश कर लो मगर, जितना भी इसको तराश कर लो मगर, पत्थर को हीरा बना नहीं सकते। ये एक हकीकत है कि इश्क और सुकून कभी दिल में एक साथ समा नहीं सकते।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायका तुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 ब्रैडफोर्ड 7230।
4: Looking ahead over the coming days, here's what's happening. First, in Bradford, Beyond the Barricade is at St George's Hall on June 19th. Also in Bradford, Sing Along of the Greatest Showman comes to St George's Hall on the 20th of June. Over in Calderdale, The Kooks are live at the Peace Hall.

आज का साथ और आज की मुलाकात बहुत खूबसूरत रही, क्योंकि आप हमारे साथी थे, आप हमारे हम सफर थे और आपने इस शो को, इस साथ को, इस मुलाकात को बहुत खूबसूरत बनाया, जिसके लिए मैं आपकी मशकूर ममनून हूँ। रिश्ते सलामत रहे, यादें बाकी रहें, तो मिलते रहेंगे सनराइज रेडियो पर। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को खुदा ताला खैर अफियत अता फरमाए, खुशी नसीब करे। आमीन। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने के बान। गुड बाय।

0: गलियां गलियां घूमी ते पैरें दी जुत्तियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसां चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन्न सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसां पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कुल्ला नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 723030 दास ब्रेडफोर्ड 723030।
4: 24 hours a day.
5: It's a classic hit. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फअऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم محترم ومكرم سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आपसे मुखातब आपका मेहज़बान मौलाना फजलदाद और हमारा ये प्रोग्राम हर हफ्ते जुमा की शाम को 8 बजे से 9 बजे तक लाइव हुआ करता है सनराइज़ रेडियो के ऊपर सनराइज़ रेडियो 103.2 FM 100.6 FM अक्रॉस द होल ऑफ वेस्ट यॉर्कशायर और आप इसको पूरी दुनिया के अंदर सुन सकते हैं www.sunriseradio.fm और इसी तरीके से सनराइज की जो ऐप है www.sunrise.radio आप ऐप को डाउनलोड करके पूरी दुनिया में हमारे इस सेशन को सुन सकते हैं आई एम योर होस्ट मौलाना फजलदाद एंड दिस इज सनराइज रेडियो Our weekly session every Friday evenings between 8 o'clock and 9 o'clock UK time. And you're most welcome to take part in this session. It's a live session. The number for our studio is 01274-306666. Hamare studio ka number 01274-306666. और इसके ज़रिए आप हमसे राबता करके चाहे कोई दीनी मसला हो या हालात हाजरा के ऊपर कोई बातचीत करना चाहते हैं चाहे लोकल हालात हों मुल्की हालात हों बैनुल अक्वामी हालात हों तो इन तमाम हालात के ऊपर अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम या कोई अच्छी बात हो जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे सामीन नाज़रीन हमारे सामीन के साथ कोई भी अच्छी बात तो ये मोस्ट वेलकम हम भी आपकी बात सुनेंगे और जो हमारे सामीन हैं वो भी इंशाल्लाह आपकी बात सुनेंगे ये मोस्ट वेलकम टू कम एंड जॉइन इन दिस डिस्कशन ऑन एयर आवर स्टूडियो नंबर इज 01274-306666 वेदर इट्स An Islami mas'ala that you'd like to discuss or ask, whether it's the issues that are affecting you or affecting the people, local issues, our national issues, you're most welcome to speak about international issues, as long as it's within the parameters of respect and politeness, you can air your opinion, even if it's something you feel may be beneficial and you'd like to talk about it or speak to the people or pass on some important message, you're most welcome. The number for our studio is 01274-306666. Or agar aap mulk ke bahar se phone karna chahte hain aur online hamari awaaz ja rahi hai aapki yahan aur aap isko sun rahe hain to you're most welcome. Aap आकर ऑन एयर आ सकते हैं लेकिन बाहर ममालिक से एक्सटेंशन 0044 का लगाना ज़रूरी है दोज हु आर कॉलिंग फ्रॉम अब्रॉड प्लीज रिमेंबर टू ऐड इन द एक्सटेंशन ऑफ 0044 एट द बिगिनिंग ऑफ द फोन नंबर कुरान करीम की आयत मैंने तिलावत की है और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 12 महीने हैं उसके बारे में बातचीत की है जो چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہ 12 مہینے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی mentions in the Quran that the number of months that Allah has decreed are 12 months. So from this ayah we understand that Allah has decreed it to be 12 months in an Islamic year. Now of course we all know that the Gregorian calendar also has 12 months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 12 months. So that much, the number of months is mutual between Islam and other cultures, other faiths, other backgrounds, other nations. دوسرے قوموں کے ساتھ, دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ اسلام کا اتنا تو قدر مشترک ہے, قدر مشترک کہ ان کی یہاں بھی 12 مہینے, ہماری یہاں بھی 12 مہینے. لیکن اگلی بات وہ یہ ہے کہ اسلام کے جو مہینے ہیں ان کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته, کہ تم اپنے روزے کو شروع کرو, مطلب روزے کے مہینے کو شروع کرو چاند کو دیکھتے ہوئے, اور اس کو ختم کرو, افطار کرو چاند کو دیکھتے ہوئے. تو ہمارا جو دار و مدار ہے ایک مسلمان کا اسلام کا دار و مدار مہینوں کے لحاظ سے وہ ہے چاند کے اوپر. It's a system that's built upon the moon, the lunar year, the lunar system. اور جو دوسرے مذاہب ہیں یا دوسرے کلچرز ہیں, اکثر جو مذاہب ہیں اور اکثر جو کلچرز ہیں ان کا جو سال ہے وہ دار و مدار اس کا وہ سورج کے اوپر ہے. They have a solar year, solar sun, lunar moon. They have a solar year. So their 12 months, they revolve around the sun and the time and the length and the full circle of the full orbit of the sun. Suraj ke ird gird puri jab circle puri hoti hai, duniya ki ایک پوری آربٹ ہوتی ہے, تو اس کو ایک سال کہا جاتا ہے. اور اسلامی نقطۂ نظر سے سال جو ہوتا ہے اس کا دار و مدار 12 مہینے, اور ہر مہینے کی شروع اور آخر یہ چاند کی آربٹ کے اوپر ہے. چاند کی ایک آربٹ ہوتی ہے, ایک اس کا چکر ہوتا ہے پورا. جب اس کا پورا چکر ہو تو ہم کہیں گے کہ ایک مہینہ مکمل ہوا. دوسرا پورا چکر ہو, ایک دوسرا مہینہ پورا ہوا. تیسرا چکر لگے, اب کہیں گے تیسرا مہینہ پورا ہوا, اخر الا آخری ہی. اور دونوں سالوں کے درمیان, مطلب گریگورین کیلنڈر کے جو جنوری, فیبروری, مارچ, اپریل, مئی وغیرہ کا جو کیلنڈر ہے, اور جو ہمارے ہجری کیلنڈر ہے, اسلامی کیلنڈر ہے, ان دونوں کے درمیان تقریباً ہر سال 10 یا 11 دن کا فاصلہ رہتا ہے. Between both of these calendars, there's a difference of approximately sometimes 10 days and sometimes 11 days, depending upon the sighting of the moon and the cycle of the moon, etc. Of course, with the solar calendar, you have a regulated 365 days in a year, and with the leap year, you have the extra one day, which is 366. So it revolves around 365 or 366 days a year. That's the solar system. That's the solar year. وہ جو سورج کا پورا سال ہے, اور جو اسلامی سال ہے تو اس کے اندر 10 دن اور بعض اوقات 11 دن کم ہو جاتے ہیں. Sometimes it's 10 days. Sometimes one year it's going to be 11 days, depending upon the sighting of the moon, whether you sighted it on the 29th or not sighted it, so it's the 30-day month. तो इससे फिर ये हुआ कि हर साल चूंकि 10 या 11 दिन इससे कम होते हैं तो हर 3 साल के बाद 10 10 10 ये 30 दिन हो गए तो हर 3 साल के बाद जो इस्लामी महीना है वो एक पूरा महीना कम हो जाता है दिनों के एतबार से इसी वजह से हर 3 साल के बाद आप देखेंगे कि रमजान एक महीना पहले शुरू होता है तो फॉर एग्जांपल उसकी मिसाल कि अगर इस साल रमजान या पिछले साल रमजान मार्च के अंदर शुरू हुआ था तो 3 साल जब गुजरेंगे तो 10 दिन पीछे होगा एक साल तो इसलिए ये जो साल गुजरा तो 20 फरवरी के ऊपर रमजान शुरू हुआ और फिर 10 दिन और पीछे होगा अगले साल और फिर अगले साल 10 दिन और जल्दी शुरू होगा तो 3 साल के बाद एक पूरा महीना ये कम हो जाता है मतलब पीछे हो जाता है इसी वजह से रमजान तकरीबन 30-33 तकरीबन 33 सालों के बाद ये पूरा साल का घूम जाता है दैट्स व्हाई एवरी ईयर बिकॉज़ इट्स 10 टू 11 डेज शॉर्टर द लूनर कैलेंडर देयरफॉर 10 days one year, 10 days next year, 10 days the year after, it accumulates to a full month approximately. So the example I was given was that in 3 years' time, the Ramadan that started in March, it's going to start at the beginning of February in 3 years' time because approximately 28 to 30 days is the difference. ऐसे करते हैं कुछ कॉल्स आई हुई हैं कॉल्स भी लेते जाएंगे और फिर इंशाल्लाह आपका इस मौजू के ऊपर भी बातचीत करते रहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वालेकुम
1: सलाम रहमतुल्लाहि
0: व बरकातुहु अस्सलाम अलैकुम
1: रहमतुल्लाह ठीक है आप भाई
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि 9वीं 10वीं मुहर्रम कब है 10वीं इसको रोजा भी रखा जाता है ना 9वीं और 10वीं का तो ये किस दिन हो रही है किस डेट को हो रही है
0: ठीक है बहुत अच्छा सवाल किया और इंशाल्लाह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के अंदर मेरा इरादा था कि इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील जरूर अर्ज करूंगा
1: ठीक है
0: तो आपने अच्छा सवाल किया
1: नहीं क्योंकि बहुत जरूरी है ना 9वीं और 10वीं का रोजा तो मुझे पता नहीं है कि किस डेट को है दिन और डेट कौन सा है
0: ठीक है
1: प्लीज वो इस सवाल का जवाब दे दे
0: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बस आप सुनते रहें और इंशाल्लाह जरूर प्रोग्राम के जो सेकंड हिस्सा है उसके अंदर मैं जरूर इसकी तफसील अर्ज करूंगा
1: क्योंकि कौन से दिन हो रही है
0: ठीक है सर ठीक है सर ओके जी तो ये थे कॉलर और उन्होंने सवाल किया जरूर इंशाल्लाह 9वीं और 10वीं मुहर्रम के बारे में अर्ज करूंगा तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि साल के बारे में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हमारे ऊपर एक नेमत की हुई है दिस इज One of the great favors of Allah that by this lunar year, traveling backwards, it is good. Why? Because all the different festivals that we have, whether it's Eid al-Adha, Eid al-Fitr, whether it's Ramadan, all the rest of them, they rather than staying in one specific part of the year, they travel throughout the whole year. Ye jo hamare स्पेशल अकेजन्स होते हैं खुशी के मौके हों या गम के मौके हों ये अल्लाह की नेमत है कि वो हमारे इस लूनर साल की वजह से चांद की साल की वजह से ये पीछे होते रहते हैं तो रमजान एक वक्त आता है कि वो गर्मियों के मौसम में होता है कुछ साल गुजरते हैं तो अब वो स्प्रिंग यानी जो अच्छी मौसम होती है उसके अंदर आ जाता है मौसम बहार के अंदर और फिर कुछ अरसा गुजरता है तो वो ठंडी की तरफ आ जाता है विंटर के अंदर मौसम सर्दी के अंदर और फिर कुछ तो इस तरह साल का गुजरता रहता है इसी तरीके से ईद हर 3 साल के बाद आपकी जो ईद है वो एक महीना पहले चली जाती है तो जो ईद अप्रैल के अंदर थी 3 साल के बाद अब वो मार्च के अंदर चली आएगी 3 साल गुजरेंगे तो अब वो फरवरी के अंदर आ जाएगी दूसरे महीने के अंदर तीन साल गुजरेंगे तो अब पहले महीने जनवरी के अंदर आ जाएगी, तो ये इस तरह जो बदलता रहता है तो ये खुद अल्लाह की तरफ से एक बड़ी ही नेमत है, क्योंकि बजाय एक ही मौसम के अंदर वो त्यौहार, वो खुशी का मौका या कोई बाज़ औक़ात गमी के मौके होते हैं, उन गमी के मौक़ों को देखना बजाय उस खास मौके, तो ये बदलते रहते हैं मौसम के लिहाज से, तो इंसान भी चुस्त रहता है। तो ये अल्लाह की इसके अंदर बड़ी अजीब हिकमत है। तो खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब ये कि ये तो इस्लामी साल के बारे में मुख्तसर मैंने बात अर्ज़ की, अब ये है कि मुहर्रम का जो महीना है ये इस्लामी साल का सबसे पहले महीना है, सबसे पहला महीना है। द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक ईयर इज मुहर्रम। हमारे 12 महीने हैं मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल थानी, जुमादुल उला, जुमादुल थानी, रजब, शाबान, रमदान, ज़िलक़ादा, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा। तो ये 12 महीने, these 12 months of the Islamic year, तो उनमें ये जो अभी मुहर्रम है उसके अंदर तीन अहम वाकयात पेश आए हैं, दिस थ्री वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस। उनमें से सबसे पहला कि नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिरौन से और समंदर से निजात नसीब की। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सेव्ड एंड प्रोटेक्टेड मूसा अलैहिस्सलाम एंड हिज पीपल एंड द नेशन ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम, प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम फिरौन बिकॉज फिरौन हैड एनस्लेव्ड देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड फिरौन इज जस्ट सेइंग अ लीडर बिकॉज ईच ऑफ देम हैड देयर ओन नेम्स, सो लाइक वी से अ प्रेसिडेंट एंड अ प्राइम मिनिस्टर, सो दैट वॉज to say Pharaoh or Pharaon, that is a kind of a name for a leader, not the individual name of the person. Us shakhs ka zati naam nahi hai ki iska naam Pharaoh hai. Pharaoh ya Pharaon, general unke leader ko kaha jata tha. To ye jo Bani Israel thi, ye kai naslon se, since many generations, ye ghulami ke andar the, aur jo bhi Pharaon aata, jo bhi unka leader aata, wo unko इस ग़ुलामी के अंदर और ज़्यादा सख्तियाँ पेश कर देता। और ये जो आखिरी आया था जिसका मुकाबला हुआ था सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो ये उनमें सबसे ज़्यादा ज़ालिम, सबसे ज़्यादा सख्त और सबसे ज़्यादा बदबख्त था, क्योंकि इसने तो खुदाई का भी दावा किया था। तो कहने का मकसद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर अब यहाँ मिस्र की ज़मीन से निकल कर चले जाओ, रातों रात निकलो, ओ मूसा टेक योर पीपल द स्लेव्स हु हैव बीन एनस्लेव्ड बाय फिरौन, टेक देम आउट अवे फ्रॉम दिस लैंड, दैट इज द ओनली वे दैट दे विल एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ फिरौन। And that's exactly what Musa alayhi salam did, according to plan, that he spoke to them, he explained to them, and helped them understand their situation, and that freedom was one of the great ni'mas of Allah, one of the great bounties and gifts of Allah. Azadi, ye Allah ki bahut badi ne'mat hai, aur tumse azadi is shakhs aur iski hukumat ne chheen li hai. आप लोगों को ग़ुलाम बनाया हुआ है, आपकी औलाद होती है वो भी ग़ुलाम, उनकी यहाँ औलाद होती है वो भी ऑटोमेटिकली ग़ुलाम बन जाते हैं, तो इसलिए इनको आज़ाद करो ताकि ये अल्लाह के दीन पर पूरे तौर पर अमल कर सके। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको पूरा समझाया आहिस्ता आहिस्ता, वक्तन फवक्तन, वक्तन फवक्तन। जब इस मौके पर पहुँच गए कि मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली हुई कि अब ये बात मानेंगे, तो फरमाया कि हम सब के सब यहाँ से रात को निकलेंगे। मैं आपको ये इशारा करूँगा, और उस वक़्त जब फिरौन के जो फौजी हैं, उसका जो लश्कर है और उसके जो सिक्योरिटी हैं, वो जब रात को सो जाएंगे, हम जल्दी निकल जाएं, और तुम मेरे पीछे पीछे हो जाना, हम मिस्र से निकल कर, यानी शहरों से निकल कर, गाँव से, देहातों से निकल कर, जब हम दूर हो जाएंगे, इनको पता ही नहीं चलेगा हम किधर गए हैं, तो चुनाचे यही हुआ रात के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जो उनको इशारा दिया था वो इशारा दिया और तमाम के तमाम बनी इसराइल निकले और मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे और पीछे से पूरे बनी इसराइल थी द होल ऑफ द नेशन ऑफ बनी इसराइल दे वर फॉलोइंग मूसा अलैहिस्सलाम समहाउ वन ऑफ द गार्ड्स ही केम टू फाइंड आउट दैट देयर्स नोबडी इन द हाउसेस checked one house, the other, then the other, and he quickly had this escalated the news to Pharaoh, who demanded straight away that the whole of his army come out and find where these people have gone and follow them and annihilate every single one of them and torture them. In fact, he was so enraged, itna zyada usko ghussa aaya Pharaoh ko jab usko pata chala कि ये लोग निकल गए हैं और इन्होंने आज़ादी की कोशिश की है कि उसने कहा कि मैं खुद इस लश्कर के साथ जाऊंगा ताकि मैं खुद देखूं कि इनको कितनी बुरी सज़ा हुई है और मेरे सामने इनको इनके ऊपर कितना ज़्यादा हम जुल्म कर सकते हैं चुनाचे वो खुद उनके साथ आया ही केम विद देम हिमसेल्फ विद द आर्मी और फिर एक वक्त आया फलम्मा तरा الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी समझ के लिए एक अजीब नक्शा खींचा है जबकि उन्होंने फलम्मा तरा الجمعان जबकि उन सब लोगों ने दोनों जमघटों को देख लिया जमआन सामने समंदर है कि समंदर के किनारे तक ये लोग पहुंच गए थे और पीछे फिरौन और उसका पूरा लश्कर है अगर आगे जाएं तो समंदर के अंदर डूबना ये यकीनी और अगर इधर ही रह जाएं तो उधर फिरौन अपने लश्कर के साथ जो आया था पूरा लश्कर इनको तबाह कर देगा और इनको सजा दे दे दे कर जुल्म कर कर के इनको ख़त्म कर देगा तो सामने भी मौत पीछे भी मौत तो उस वक़्त उन सब ने जोर की आवाज में कहा कि इन्ना लमुदरकून हम अब पकड़े गए कोई छूटने का रास्ता नहीं है when they saw right in front of them death because the sea was in front of them and behind them they had Pharaoh and the whole of his army which was certain death and torture and cruelty had they taken hold of them had the army taken hold of these Israelites it would have been certain death but before death it would have been torture and cruelty and dhulm so they began to say loud O Musa now we have been caught in front of us death we certainly will drown in this huge sea and behind us is this death coming closer and that's when Musa al-Islam's conviction showed very obviously وہاں موسیٰ علیہ السلام کا یقین جو ہے اللہ پر سامنے ظاہر ہوا اور کھلا ظاہر ہوا کھلم کھلا فرمایا کلا انما عی ربی سیہدین ہرگز اس طرح نہیں ہو سکتا کہ تم اس طرح پکڑے جاؤ انما عی ربی میرا رب وہ میرے ساتھ ہے उसने ही मुझे हुक्म दिया था मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाना चाहते हैं उसने मुझे यहाँ तक आने का हुक्म दिया था अब आगे रास्ता निकालेगा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह इज़ द वन दैट विल मेक द वे फॉर अस तो चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि ए मूसा तेरे सामने जो पानी है इस पानी को अपने आसा जो बड़ा डंडा होता था मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जिसके ऊपर टेक लगाते थे तो फरमाया कि इस आसा के जरिए इस समंदर को मारो स्ट्राइक द सी विद द स्टाफ द ह्यूज बिग स्टिक द बिग स्टाफ दैट यू हैव एंड मूसा अलैहिस्सलाम हैड दिस कन्विक्शन एंड ही एग्जैक्टली डिड व्हाट अल्लाह हैड आस्क्ड हिम एंड स्ट्रेट अवे फकाना दोनों साइड के जो समंदर हैं वो बिल्कुल इस तरह फट गया दरमियान से और फट कर दोनों साइडों में कतौदिल अजीम बड़े पहाड़ों की तरफ दोनों साइडों में इस तरह पकड़ रहा। इस तरह ऊपर गोया के किसी ने किसी कपड़े को फाड़ा है और कपड़े को फाड़ कर एक साइड को एक तरफ कर दिया है, दूसरे साइड को दूसरी तरफ करके जमा कर दिया, तो वो दोनों छोटे पहाड़ों की तरह लगते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां जो समंदर था उसको दरमियान से चीर कर रास्ते दरमियान में बना दिए। और उलमा फरमाते हैं वो रास्ते अचानक सूख गए मिनटों सेकेंडों के अंदर, क्योंकि वैसे जहाँ समंदर होता है पानी होता है, पानी अगर हट भी जाए तो नीचे कीचड़, तो कीचड़ के अंदर तो इंसान भी फंस जाता है, जानवर भी फंस जाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुअज्जिज़तन उस तमाम के तमाम को सख्त कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वहाँ से गुजरना शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम his whole nation began to pass through the water and Allah had split it asunder, split it open. And just like when you rip a cloth and one half of it is gathered to one side and the other half is gathered to the other side, the whole water was gathered on either side and they were upholding like two huge mountains. Quran Kareem uses Qatawd al-Azim, Qatawd, a huge big mountain on one side of water, a huge big mountain of water on the other side. And Musa alayhi salam and his nation passed through. Aur itni der mein Fir'aun aur uska lashkar bhi pahunch aaya. And when Fir'aun and his army came there and they noticed that the sea had parted, and Fir'aun, he ordered his army that you must also go along this way. When they reached to approximately the middle of the sea, and Musa alayhi salam and his tribes and his nation had come out from the other side of the sea, Allah subhanahu wa ta'ala ordered the sea to come back. And there Fir'aun and his whole army were drowned. वहाँ फिरौन और उसका पूरा लश्कर जो है वहाँ डूब गया, क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम के आखिरी आदमी वहाँ से निकल गए और दूसरी तरफ पहुँच गए किनारे पर, और फिरौन और उसका लश्कर दरमियान तक पहुँचा, बहुत नज़दीक था पकड़ते हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, पानी सब का सब वापस आया और फिरौन और उसका पूरा जो लश्कर है वहाँ सब का सब हलाक हो गया, वो सब डूब गए। और ये जो वाकया पेश आया था ये 10 मुहर्रम को पेश आया कि अल्लाह ने फिरौन से भी और समंदर से भी दोनों जमान दोनों वहाँ ताकतें जमा हो गई थी, तो अल्लाह ने फिरौन के जुल्म से भी और समंदर की ताकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बचाया। तो ये बचाना जो था ये 10वीं मुहर्रम के दिन था। अब आए मसले के तौर पर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बास लोग जो यहूदी हैं, सारे नहीं बास, वो रोज़ा रख रहे हैं मुहर्रम के दिन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को फरमाया कि इनसे पूछो इस दिन वो रोज़ा क्यों रखते हैं। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोटिस्ड दैट सम ऑफ द पीपल फ्रॉम द ज्यूइश नेशन दे आर कीपिंग अ फास्ट ऑन दिस डे, एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्टेड द सहाबा टू गो एंड आस्क देम, एंड दे रिप्लाइड दैट ऑन दिस डे मूसा अलैहि सलाम वाज सेव्ड फ्रॉम फिरौन एंड फ्रॉम द सी, एंड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटफुलनेस टू अल्लाह We are fasting on this day. इस दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी, तो इसलिए उसके एहतरामन और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए हम इस दिन रोज़ा रखते हैं। तो चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि नहनु अहक्कु बिमूसा मिनहुम, हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हकदार हैं इनसे, तो अगर ये एक दिन रोज़ा रखते हैं तो हम दो दिन रोज़ा रखेंगे। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि मुहर्रम के जो दो रोज़े हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत फरमाए हैं, एक 9 मुहर्रम और एक 10वीं मुहर्रम, यानी 10वीं मुहर्रम को तो रखना ही रखना है क्योंकि उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी। लेकिन दो रोज़े एक दिन या तो पहले रख ले कि 9 और 10 मुहर्रम, और अगर चाहे तो 10 और 11 तारीख। ऐसे करते हैं, ब्रेक का वक्त आया है, ब्रेक के बाद इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे और जो साहिल ने सवाल किया उस सवाल का भी जवाब देंगे। विल स्पीक अबाउट दिस इंशाल्लाह अ बिट मोर आफ्टर ब्रेक एंड बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट टाइम, इनफैक्ट वी आर ओवर ड्यू बाय मेनी मिनट्स, तो विल गो टुवर्ड्स ब्रेक। आफ्टर ब्रेक इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इस्लाम और एनीथिंग एल्स देन यू मोस्ट वेलकम टू गिव अस अ कॉल। आप कॉल भी कर सकते हैं लेकिन ब्रेक के बाद, ब्रेक के दौरान नहीं, आप कॉल भी कर सकते हैं और कोई चाहे मसला हो, कोई अच्छी बात हो, हमारे स्टूडियो का नंबर 01274 306 66 01274 306 66। मैं हूँ आपका मेहजबान मौलाना फजलदाद और ये है सनराइज रेडियो। आई एम योर होस्ट मौलाना फजलदाद एंड दिस इज सनराइज रेडियो।

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसीगियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: सुनो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
0: पैरन ये जुतियां ही कसीगियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
4: लुकिंग फॉर अ क्वालिटी होम टू रेंट?
5: व्हेदर यू नीड अ 1, 2 or 3 bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
4: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

the difference between the Islamic lunar year and the normal Gregorian solar year. दोनों के दरमियान क्या फर्क होता है और कितने दिन का फर्क होता है और तीसरी बात उसका फिर असर क्या है. What are the effects of this difference of the decreasing of the days? और फिर उसकी हिकमतें. What is the wisdom behind it and how is it special for Muslims and better for Muslims in the lunar year than the normal year? And one of the reasons I said was the circulating of the festivals and the events throughout the year, sometimes in the colder months, in the spring months, in the autumn months, in the summer months, it circulates. So you have Ramadan in different seasons throughout your life. Vagera, vagera. Aur phir uske baad, jo sabse pehla mahina hai, Muharram ka mahina, uske baare mein kuch baatein arz ki aur usme Sayyidina Musa alaihi salatu wasalam ka jo aham waqia pesh aaya, uska zikr maine kiya aur phir uske saath jo taluq रोज़े का है उसका जिक्र करते हुए फिर मैंने ये बात अर्ज़ की कि इस साल 2026 के अंदर जो मुहर्रम का रोज़ा है अब वेंसडे और थर्सडे दो दिन जो हैं दो रोज़े होते हैं वेंसडे और थर्सडे 24 जून आप रख सकते हैं अगर रखना चाहें इफ़ यू वांट क्योंकि ये सुन्नत रोज़ा है ज़रूरी नहीं है अगर कोई रखना चाहे सवाब मिलेगा नहीं रख सकता किसी मजबूरी की वजह से या किसी और वजह से तो दैट्स परफेक्टली फाइन आपको रखना ज़रूरी नहीं है एस्पेशली जो हमारे बहुत ही कमज़ोर या सख्त बीमार या बुज़ुर्ग वेरी एल्डरली वेरी वीक इलनेस कमिटमेंट्स समटाइम्स तो या हेल्थ रीजंस तो ये तमाम के तमाम वजूहात होती हैं तो इसलिए ये बातें मैंने अर्ज़ की बाकी अखीरी दो तीन मिनट उसके अंदर दोबारा आपकी तवज्जो जैसे आम तौर पर मैं दिलाता हूँ कि रिमेंबर द जेनोसाइड इज हैपनिंग एंड दैट्स बीन हैपनिंग इट हैज़न्ट फिनिश्ड येट द क्रूएल्टी अराउंड द वर्ल्ड whether it's in Palestine whether it's in other parts of the world duniya ke dusre hisson ke andar whether that cruelty is in Asia and you can see lots of examples whether it's in the Kashmir region wahan aapko pata hai pichle kafi hafton se since many weeks there's been a lot and a lot of cruelty going on in that area of the world similarly idhar Europe ke andar dekhen to Ukraine ka masla और रशिया का मसला उधर देखें तो फलस्तीन के साथ जो हो रहा है इट हैज़न्ट स्टॉप्ड फलस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है द क्रूएल्टी एंड द टॉर्चर्स एंड नाउ सम ऑफ द थिंग्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ थ्रू द सोशल मीडिया एंड थ्रू द पीपल हू हैव बीन इन इजरायली प्रिजंस एंड देयर टेस्टिमनीज आर कमिंग आउट एंड द डॉक्टर्स and the nurses and the health professionals who have witnessed all these things and the cruelty that has been played out in front of them all that is coming out now on media and social media on other forms of media etc to usse pata chalta hai ki duniya ke andar bahut zulm ho raha hai and then in the African continent you have zulm going on and you know about what's happening in Niger Nigeria in Congo un ilaqon ke andar so isliye dua kare hamesha keep praying that Allah subhanahu wa taala jahan kahin bhi zulm ho raha hai ya Allah is zulm ko khatam farma aur ya Allah unko सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा और जो जुल्म करने वाले हैं या अल्लाह उनको तो सही समझ दे दे ताकि वो जुल्म करने से रुक जाए और इसके साथ साथ विद दैट एज वेल एट द सेम टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम जो हैं बड़े सुकून के साथ हैं इत्मीनान के साथ हैं और वो जो जुल्म वहाँ हो रहा है अल्लाह ने हमें उससे निजात दी हुई है वरना हम कमज़ोर हैं शायद बर्दाश्त न कर सकें Allah subhanahu wa ta'ala has granted us peace, tranquility, safety, security. All these are great ni'mats of Allah. So we thank Allah that Allah has given us all this, but at the same time not to forget what is happening in the other parts of the world and keep praying for peace and sukoon and itminan. Isi ke saath aaj ke is session ko dua ke saath khatam kar lete hain. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين يا رب العالمين

0: तू हम सबको दीन की सही समझ नसीब फरमा। या अल्लाह तू हम सबको दीन पर इस्तकामत नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग बीमार हैं तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा, और जितने भी परेशान हाल हैं जिस किस्म की भी परेशानी के अंदर हैं, या अल्लाह सब की परेशानियों को तू दूर फरमा। या अल्लाह तू हम सबको एक और नेक बना, और या अल्लाह हमारे अंदर जितने भी कमज़ोरियां हैं उनको दूर फरमा कर या अल्लाह तू हमें दीन पर इस्तेकामत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको हर वक़्त हर जगह हर किस्म की इज्जत नसीब फरमा, और हर किस्म की जिल्लत से रुसवाई से बदनामी से तू हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की बख्शिश और मगफरत फरमा, और हमारी जब मौत का वक़्त आवे तो या अल्लाह हम सबको खात्मा बिल ईमान नसीब फरमा। या अल्लाह तू हम सबको खात्मा बिल ईमान नसीब फरमा। या अल्लाह मौत के बाद जितने भी मराहिल हैं हम सब के लिए वो आसान फरमा। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हमीदा हैं या अल्लाह वो अच्छे नेक खूबसूरत अखलाक हम सबको नसीब फरमा, और हमारे जो बुरे अखलाक हैं हमारे दिल के अंदर जो बुराइयां हैं या अल्लाह ज़ाहरी और बातनी अखलाक को बुराइयों को हम सब से दूर फरमा। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की दुआएँ मांगी हैं उन तमाम खैर की दुआओं के अंदर हम सबको हिस्सा नसीब फरमा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से हिफाजत मांगी है उन तमाम चीज़ों से हम सबको हिफाजत नसीब फरमा। और सबसे बड़ी बात वो तेरी रजामंदी है दुनिया और आखिरत के अंदर, तू हम सबको अपनी रजामंदी नसीब फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं हूं आपसे मुखातिब आपका मेहज़बान मौलाना फजलदाद, और हमारा ये हर हफ्ते का प्रोग्राम हर हफ्ते जुमा की शाम को 8 बजे से 9 बजे तक लाइव हुआ करता है। इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं फ़ोन इन करके, चाहे कोई इस्लामी मसला हो, कोई हालात हाज़रा पर तबसरा हो, कोई अच्छी बात हो, आप आकर शेयर कर सकते हैं। आई एम योर होस्ट मौलाना फजलदाद एंड दिस इज़ आवर वीकली सेशन एवरी फ्राइडे from 8 o'clock till 9 o'clock UK time, and you're most welcome to come on air and take part in it. Every week inshallah, it could be an Islamic mas'ala that you want to ask, it could be regarding the local issues, anything that you feel beneficial, we'd all like to listen to you. Isi ke saath, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Centre at 9, two trains have crashed south of Bedford, with the RMT union hearing reports of serious injuries among passengers and crew. Two East Midlands railway services bound for London St Pancras are involved. It happened just after 5 o'clock this afternoon. It's understood a stationary train reporting a failure was hit from behind. Railway expert Tony Miles says it raises lots of questions.
3: The train should have been kept a safe distance apart. If one had come to a stop, then the one that was following it should have been kept a couple of signals behind it. So was there a reason why it was able to catch up with the train in front? Was there a problem with the signal system that didn't detect a train was there for some reason?
2: Aerial footage shows clear damage to at least two carriages and emergency services spread across a field. Police are asking friends and family of those on board not to travel to the scene. Local hospitals are asking only those with genuine emergencies to attend. Here's North Bedfordshire MP Richard Fuller.
4: You may have heard reports directly yourself about the local people also trying to help out by providing food and water and supplies to people who are stranded in these fields. So everyone's pulling together.
2: Well, the Transport Secretary says she's deeply concerned. In other news, Andy Burnham's allies are reportedly hoping to install him as Prime Minister by September, following his victory in yesterday's Makerfield by-election. It's increased pressure on Sir Keir Starmer. A woman starting a 12-year jail sentence after killing her 5-year-old stepdaughter by scalding her in a hot bath nearly 50 years ago. Andrea Bernard's death had been treated as an accident until her brother gave police new information in 2022. Scotland could reach the knockout stages of the World Cup for the first time tonight. That'll happen if they beat Morocco in Boston. Captain Andy Robertson's ready for the challenge.
5: If we can put in our best performance, then, you know, I believe that we can get what we want and hopefully be the ones that achieve the history.
2: And the USA are on track to secure their place in the next round. The co-hosts lead Australia 2-0. That's the latest. I'm Cam Hall.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहने तीला है, सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड, छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: looking for a quality home to rent.
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां घुमी ते पैर ने जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274 488935

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसीगियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकन तीला सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: Excuse me.
1: Yes.
0: Hello.
1: Hi.
0: मैं ना थोड़े नाल एक गल करनी चाहुंदा सी।
1: दसो।
0: मैं कहना सी तुसी ठीक ठाक हो?
1: Yeah, of course.